0: छेव आइज छेव हा हा माले झूले माले हा हा भित्त भित्त छेव छेव हा झूले माले
1: रोपाई
0: लगाड़ी बढ़ी रहता झूले माले यता छेव छेव छेव भित्त ल।

0: हेलो बाउसी हजुर, ल ऊ त डाँडा थुम्को मिलाइदिनु त थुम्को, रोपारलाई गाह्रो हुन्छ के?
1: यसपालि त छोरी माइती मिलेर एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ, अर्को साल के हो के हो? ए साइली ए माइली, छिटो मुन्टा न छिटो मुन्टी।

0: 敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲 Raja. Aja, aja. Raja. Babu. Farki. Kale.
1: Lala, charjana rubar, tallo barame dhara. Duiyana gora biulier aun.
2: Timi chahi churo thadai ko thadai. खुबे हैकिम पोल तेरा अनिल कौन सा हूँ तू तू भी बनियाओ आ आ

0: FM 91.9.
1: BJ विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदै बास र मिठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24437।
2: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो।

गणेश बाहन मुसो कुमार बाहन मयूर था गणेश बाहन मुसो अक्कल डेराई ते मुसा को पानी मात्रै छु सिन्दूर दुबो फुलमाला पूजौ गणेश वाला।